देर जरा ये टोप पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप। गोरा धुनाई की थाली, सूरत तेरी काली काली, तेरे लिए मैं दे

0: तेरे लिए मैं देख ये लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

से घूम के आए बम्बई पूना झांसी और बताओ क्या क्या लाए शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी।

देख जरा ये टोप, पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप।

0: तेरे लिए मैं देख ये लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

घूम के आए बम्बई पूना झांसी और बताओ क्या क्या लाए शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी।

बिना झोल है। ए जी हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ काहू सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की जी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की जी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की जी से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन की सीधे अदावत नहीं मुझे।

0: को देखते, अच्छे बुरे को देखते कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देखते अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की।

0: अम्मा जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की दिल से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की दिल से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन की दी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की दी से अदावत नहीं मुझे।
1: झोल है ए जी हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की दी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की दी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की दी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की दी से अदावत नहीं मुझे।

0: देखते अच्छे बुरे को देखते कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देखते अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की।

हाँ जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की कहता हूँ सच के झूठ की कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। दुनिया झोल है ए जी हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।

0: के अच्छे बुरे को देख के कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की।

0: अज जाइए भी आप तो झूठों के बाप हैं। अजी मामा जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
1: ना झोल है ए जी हम ना कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा। कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।

हाँ जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए दीपिका के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए दीपिका के फुर्सत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की दी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की दी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन की जीते अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की जीते अदावत नहीं मुझे।

0: जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश।
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है।

0: सर्प सिधारी वो वीरात्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है
0: अमर है।

0: गर्भसिधारी वो वीरात्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है धन्य

गर्भ से धारी वो वीरात्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश।

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरे सपनों की सुंदर रानी, दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो।

0: कहानी बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: सावन में झूले पड़े, सावन में झूले पड़े, हिल मिल झुलाए हम, हिल मिल झुलाए हम,
0: प्यार भरी।

0: तीन दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
0: चंदा की चांदनी हो तारों भर आते हूँ चंदा की चांदनी हो तारों भर आते हूँ कश्ती में बैठ के फिर तेरी मेरी बातें हूँ मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी दिल की